0: Hei hi Akashvani Aizol FM za oi za point pasari atanga puan chua ani vuin ni som thasari sang ni som ni parok zir top ni kan hun voi khatna chu kan lo chanta a min ngai thadu zong zong te chebe kan book chewa ni chatak mang turin tu sakna kan lan cheu program puang tu hi walal ngei zwali kani a control room engineer duty Nancy F lanun pui ani vuina kan tu pui atan eng pakatin adang ati en hian a eng a chuai ngai lo ti ani a ti chuan daria ta changa daria le mi somni thing hian hindi tonga pathian pakna hla ngai ngai thlak na ho ngai thlak na hun kan nei don ani
1: नमस्ते श्रोताओं, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।
0: हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग सुप्रभात आप सभी प्यारे दोस्तों को आरजे वील की तरफ से और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम सओ 100.7। दोस्तों जैसा कि हमने कहा था कि आज का ये दिन है दोस्तों हिंदी के मसीही गीतों के साथ शुरू होगा दोस्तों और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। यस, और हमें आप सभी के प्यार भरे संदेशों का भी इंतजार रहेगा दोस्तों। और आज की सुबह आप सभी ने बहुत ही अच्छी वाली मुस्कुराहट के साथ अपने दिन की अपने सुबह की शुरुआत की है या नहीं। यस, अगर नहीं किया है अभी तक आप कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ही खुश नसीब होते हैं कि हमें ईश्वर एक नया दिन देते हैं अपने समय को बिताने के लिए, हमें कुछ करने के लिए, है ना दोस्तों। तो आइए इस खंड में मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ सिंग वेंग ब्याल मसी संगति जायपोल और वाइवकोन मसी संगति जायपोल और बोंगकोन कौशन मसी संगति जायपोल के गाए बहुत ही खूबसूरत गीत, मसीही गीत दोस्तों। और आज सुबह के 8 बज चुके हैं और आप सभी अपने अपने कामों में जाने के लिए शायद तैयारियां कर रहे होंगे। आप उठ चुके होंगे अपने बिस्तर से, है कि नहीं। यस, और यस जो भी ऑफिस के लिए जा

जाने वाले हैं किसी काम के लिए। वो सभी दोस्त मतलब उठ चुके होंगे अपने बिस्तरों से और खाना खाने के लिए, सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी हो रहे होंगे या खाना बना रहे होंगे। और आप भी, यस, अभी शायद खाना बना रहे होंगे और शायद आप अपने अपने किसी ज़रूरत के कामों के लिए निकल चुके होंगे, रास्ते पर जा रहे होंगे, गाड़ी चला रहे होंगे दोस्तों। यस, और आप जो भी करने वाले हैं, जो भी कर रहे हैं, आप सभी अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है। तो आइए हम भी अपने इस आज के हिंदी के सबसे पहले खंड की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत मसीही गीतों के साथ। और मैं आप सभी को सबसे पहला इस खंड में सुनाना चाहूंगी छींग विंग बियाल मसीह संगति जायपुर के आवाज में गाया गीत तेरे पास मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गीत सिंग वेंग ब्याल मसीह संगति की ओर से जो गीत आपने सुना था तेरे पास, यस, आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। बहुत ही खूबसूरत गीत है ना दोस्तों, और उन्होंने क्या खूब गाया है कि नहीं, यस। और अनसाथियाम ले मैं इतरा, और इसके बाद हम चलेंगे वाइवकॉन मसीह संगति की तरफ। और मुझे माफ कर देना दोस्तों कि मैंने बोंकोन कहकर मैंने आप सभी को बताया था, लेकिन ये बोंकोन नहीं है, बूंकोन कौशन मसीह संगति के गाए हुए गीत हम सुनेंगे, ठीक है। और बूंकोन निलव मो अगति बोंकोन निलविन बूंकोन। तो चलिए गीत की तरफ चलने से पहले मैं आपके भेजे गए संदेश की तरफ चलना चाहूंगी। और यस, अभी जो मांगते पाते फिटनेस बॉय मेरे दोस्त जामते पीसी जेसिकाइते एलजेड साइलाउते पो ओ, अभी जो मुझे संदेश भेजने वाले मेरे दोस्त, आप सभी से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप सभी कैसे हैं। और दिल से मैं आप सभी प्यारे दोस्तों को नागते पा फिटनेस बॉय जामते पिसी जिसिकाई एलजेस साइलाउते में आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी कि आपने हमें, यस, इस एफएम 100.7 को सुना, यस, और हमें संदेश भेजे। मैं इसके लिए आप सभी को मैं दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी। और सबसे पहला इस खंड में संदेश हमें भेजा है नागते पा ने, और नागते पा ह्यान आरजे जिंग लम से बैले वो इन इड्यूटी हुन नुआम तका हुन इमन थे ना दुसक ना कल्हान चुंग चे इन इल प्लेले तुर्खा जिल जामा ओमेगा सांग ते आमिंग मोय ते आ मोय हुन पुई इतान कल्हाने अरोन ते आ अलोम ओम छीन ले मे नागते पा कन लोम लुत के ओ कन सवाई आई ओ इन कन लोम एम एम ए कन नंती चेंगे ओ। चौहान फिटनेस बॉय की तरफ से संदेश आया है, तुलना जो फिटनेस बॉय ही बहुत ही दिखाई नहीं देते हैं, शायद इन्होंने लव सॉन्ग्स सुनना बंद कर दिया है शायद। तिरोजाम फिटनेस बॉय ही लव सॉन्ग वेल ही गई था कि अभानसन अमोनिति मई तुर्ख्यान मसी संगति आ सौ ह्यान लो इन लन छी नमनी एनी लो पोनेंगे एक सेगमेंट लवा ह्यान लो लंगथाउ इन पोचुनी से हेत्या इन रोन इन लार जे उजो तिपो ही कंतान सुआ नलुओनी ओ। और फिटनेस बॉय लिखते हैं बॉस जे मसी ईसुआ ने नीले नुआमले रोन तिया ए कलोम लुत तुक ओ ईसुआ ने नीले नुआमले ती लाइ तखा अपोई मो अनी ओ। चुआन मैसेज लम कंकल जेल रियांग मेरे दोस्त जाम की तरफ से संदेश है, और उन्होंने लिखा है आज वेल नमस्ते सुप्रभात, यस, आपको भी सुप्रभात। ओ जाम चुआन निजान लमाते इमुतु येम चुआन नंगसु इतना आते इथेंग ले दे तो इन कशिया करिंग त्रो जाम इथोग्रीम बोक्सी आ इतमा बोक्सी आ नंग ही इफेल कति ले मै मो चुआन एफएम जो ओ या ते यान इ एक्टिव छबोक्सी मैसेज तोन तैमा बोक्सी एवर्ड हिचु पेक्ला कि निजाम ओले तिचुआन वो इन सो इ प्रोग्राम दुआन लोक इपुआन पो अधिक जैतो।

zohian mizo segment in aron chunzom thosi a details hian ka soi ngai shan lawamo anron soi le meidona a ba gai shat sa be kan bo gadro karma sa ka chwati ro soi ta su kha kha ani te ka kan han hai ve la tro ai tla thum te kan di ve la Chan, I playlist the duty be turned in tan le pusama batinu pa mission bank lang ami tan le control room duty le duty officer tan po tin uchipia vipin natan le zoram remote fm zo oi ngai thatu te tan po vu interest na chat tak nei a tlong taka I duty theinan du sakna kalhan itan kalhane aronti a infel chin le mai min du sakna zong zong hi kangai lu tak zet a lom thu karon se tak zet ani o zam ti chuan o pc jessica I message kan char le lokang rjvl ti be hun man nuam o next kha nang le duty pui te tan o ron ti boka kan lom lu tu ke o ti chuan elza sailo hian Hello, Lelvan. Morning, Arontia. Nang pong good morning le. Titsuan, meng moy te ya atoy felboka. Siyale lolo ang. Vanlal namaste, duty noam le ronti boka, ole, ming moy teya, kalom lutuke, oh, swan, tia le lolo ang, mere dos, vipin ki taraf se sandesh aya he, thao ma le, may office kal tur tu, oh, to tu hun to ni, oh, ole, or, vipin likte he, ki namaskar a JVLG, eh, aba official ve, namaskar ki khair hi chumo official tat lekin mujhe namaste kehna acha lagta hai yes aapko bhi namaste vipin ji dr vipin sir aapke naam ke aage g laga raha hu rakh lijiye acha lag raha hai and मुझे अच्छा नहीं लगता जी जी जी कहना अगर आप मुझे ऐसा कहेंगे ना तो मैं भी हमेशा लगाऊंगी विपिन जी करके तो चलिए सुनते हैं फिलहाल वाइवकोन मसीह संगति के गाए गीत मिलके चले दोस्तों मेरी तरफ से और बस आप सभी से कहना चाहूंगी कि आप सभी ईश्वर को धन्यवाद दीजिए अपने दिन की शुरुआत करने से पहले है कि नहीं यस और वैसे भी आज का मौसम मतलब आजकल का मौसम उतना ठीक नहीं है बारिश बहुत ज्यादा हो रही है रिमझिम बारिश कभी जोरों से होती है कभी थोड़ा थोड़ा होता है लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है तो बस आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि कोई ऐसा अनहोनी दुर्घटना ना आए है कि नहीं दोस्तों यस लेकिन कहीं कहीं जगहों पर बहुत ही लैंडस्लाइड हो चुके हैं और हो रहे हैं तो आप सभी कहीं भी जाएंगे आप सभी अपना ध्यान रखिएगा प्लीज़ ठीक है और अच्छे से अपने अपने कामों की तरफ आप जा रहे हैं तो दूर है किसी का पास है किसी का दूर है आप सभी अच्छे से जाइएगा गाड़ी चलाएंगे तो अच्छे से चलाइएगा सावधानी के साथ ठीक है तो आइए मैं गीत की तरफ चलना चाहूँगी आप सभी के लिए इस खंड का दूसरा गीत बाबे कौन मसीह संगति की ओर से आप सभी के नाम

मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अभी जो आप सुन रहे हैं उस गीत को ना दोस्तों बूंकोन कौशन मसीह संगति ने गाया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है इनका, मतलब टाइटल ना चेंज हो गया है, ठीक है। इसलिए मैं इनके जो सॉन्ग्स के टाइटल है ना, मैं आपको नहीं बताऊंगी, बस मैं आपको बता दूंगी कि ये गीत उन्होंने गाया है करके, ठीक है। यस, और अगला गीत हम सुनने वाले हैं वाइवकोन मसीह संगति की ओर से गाया गीत, मसीही गीत दोस्तों। तो चलिए, 8:30 बजने वाले हैं और यस, हमारा समय पूरे 8:40 तक का है दोस्तों। दारियले में सुमली खेंग हुन कन नई दोना, यस, और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM से 100.7 दोस्तों। और इसके बाद मैं दोबारा वापस आऊंगी हिंदी के खंड को लेकर 10 बजे दोस्तों, ठीक है। यस, सुबह के 10 बजे हिंदी के कुछ हिंदी फिल्मों के गीतों के साथ दोस्तों, ठीक है। यस, और मैं तो हमेशा तैयार हूँ आपके साथ हंसी मजाक और प्यार भरे बातें करने के लिए, हमेशा मैं तैयार हूँ। यस, और आप भी तैयार होंगे है कि नहीं? यस, और लेकिन डर ये भी है कि मौसम उतना ठीक नहीं है, थोड़ी घबराहट तो हो रही है कि कुछ ना हो जाए, बहुत ही भयंकर लैंडस्लाइड हो गया तो क्या होगा हम सबका। लेकिन दोस्तों, इन सब में ना हमें विश्वास है अपने यीशु मसीह पर, हमें विश्वास है भगवान पर दोस्तों, कि वो हमें इस सभी संकटों से ना जरूर बचाएंगे, और हम सभी मतलब ईश्वर का हम सभी के साथ उनकी कृपा आशीष आशीर्वाद हमेशा बनाए रहे, मेरी यही उम्मीद है दोस्तों, ठीक है। यस, तो आप सभी अपना अपने अपने काम अच्छे से करते रहिए, अभी आप कुछ खा रहे हैं तो अच्छे से खाइएगा।

और मेरे लिए भी खा लेना, ठीक है? यस, तो वैसे भी आज बहुत जल्दी से जाना है और जाना था और जल्दी से पहुंचना था, तो मैंने सुबह में कुछ खाया भी नहीं है, तो मतलब मुझे थोड़ा सा भूख लग रहा है, तो इसलिए अगर आप कुछ खा रहे हैं तो मेरे लिए भी कुछ खा लेना। शायद विपिन जी कुछ खा रहे हैं शायद। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि मेरे लिए भी खा ले, तो मेरे पेट फुल हो जाए। तो चलिए, आप सभी जो कर रहे हैं अच्छे से करते रहिए, और ईश्वर की कृपा, आशीष, आशीर्वाद हमेशा बनाए रहे। और स्पेशली आज तो आप सभी को फिर से अच्छे से दिन गुजारनी है ना? तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। गीत में सुनाना चाहूंगी और वाइब कौन मसीह संगति की ओर से क्रूस पर मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

बहुत ही खूबसूरत सा गीत दोस्तों छिंग वाइवकोन मसीह संगति की ओर से जो मसीही गीत गाया था दोस्तों आप सभी को सुनकर पसंद आया होगा। जी हाँ दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जिस तरह ईश्वर आपसे प्यार करते हैं ना, मैं भी वैसे ही आप सभी से प्यार करती हूँ। और आप भी एक दूसरे के साथ प्यार कीजिए, अपने परिवार को प्यार कीजिए, प्यार दीजिए, अपने माता पिता से प्यार कीजिए, अपने भाई बहन को प्यार कीजिए दोस्तों। और जो भी चीज़ आपके पास है ना, उसे प्यार करने, बस प्यार करते रहिए, ठीक है। आप ज़्यादा मत सोचिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। और ये बात कभी भी मत भूलना कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रॉस पर जो कुर्बानी दी है दोस्तों, हमारे लिए, हमारे नए जीवन के लिए दोस्तों, हमारे हमारे लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी है, उसे कभी भी मत भूलना। इसलिए दोस्तों, आप भी अपने लिए ना सही, दूसरों के लिए दोस्तों कुर्बान दीजिए, सेक्रीफाइस कीजिए दोस्तों। अगर किसी की भलाई करनी है ना, तो सेक्रीफाइस भी कर दीजिए दोस्तों। और वैसे भी ना, जिंदगी में ना सेक्रीफाइस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर सेक्रीफाइस नहीं करेंगे ना, तो आप आपको ना अपनी मंजिल कभी भी नहीं मिलेगी, और आपको ना उतनी खुशी नहीं मिलेगी। जब आपको सफलता भी मिलेगी ना, तो आपको उतनी खुशी नहीं मिलेगी। अगर ज़िंदगी में सेक्रीफाइस नहीं करोगे ना, तो आपको वो ऐसा वाला सुकून, खुशी बिल्कुल नहीं मिलेगी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। इसलिए ज़िंदगी एक सेक्रीफाइस है, ठीक है। दूसरों को प्यार दीजिए, खुद भी, मतलब आप दूसरों को प्यार देंगे ना, ज़्यादा प्यार देंगे ना, तो आप ज़रूर खुश होंगे, ठीक है। तो आइए आप सभी मिल के हमेशा खुश रहिए, परिवार, आपके परिवार खुश हो, आपके आप अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहें, बुरा बर्ताव ना करें, ठीक है। यस, और यहाँ पर मैं जाते जाते एलारा मामित की ओर से जो संदेश आया है वो मैं पढ़ना चाहूँगी, और वैसे भी हमारा समय खत्म होने वाला है। यस, आरजेवी एल से बैठी थी नॉमले इजाइटिर तूर अफाई खान इतान ले नाइलतू तेतान ओ अरोंदिया पु एलारा चुंगा गन लोमलु तुका तिचुआन अले खबुदा तिपो हे अन ले वे ट्रन sumlam pangte pokha aji oh ai kauna te khan lau check between selang tero aron lut pheu pheu don ani mo ale to chali filhal ye aakhri geet thing a wing bial masi sangati ki or se gaya geet se main aap sabhi se vidha lena

चाहूंगी आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM 100.7 दोस्तों और हिंदी के खंड में आपके साथ जुड़ी है आप सभी की दोस्त आरजे वीएली और अगले खंड में आप सभी के साथ जुड़ने के लिए आरजे मामोई हाजिर होगी दोस्तों और मैं वापस आऊंगी 10 बजे दोस्तों आप सभी का इंतजार रहेगा। तो आरजे वीएली की तरफ से जीन चोल ए लौजों सोंग तितान ओ जय तुई वेक फोटू ओ

नमस्ते श्रोताओं, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।

नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी प्यारे दोस्तों को फिर एक बार आरजे वीएल की तरफ से। और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम जो 100.7। दोस्तों, और आप सभी कैसे हैं और आप सभी का समय कैसे बीत रहा है दोस्तों? और सुबह के 10 बज चुके हैं और आप सभी अपने अपने कामों में पहुंच चुके होंगे। यस, और आप सभी अपने अपने काम कर रहे होंगे, आप कहीं पर भी होंगे दोस्तों। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? और हम आपका स्वागत करते हैं हमारे आज के हिंदी के दूसरे खंड पे। और आपके साथ जुड़ी है आप सभी की दोस्त आरजे वियली। और आरजे वियली को दोस्तों आप सभी के प्यार भरे संदेशों का इंतजार करेगी। और दोस्तों, आइए मेरे साथ दोबारा इस खंड में आरजे वीएली के साथ हंसी मजाक और प्यार भरे बातें करने के लिए मेरे साथ हाजिर हो जाइए दोस्तों। तो आइए, इस खंड का सबसे पहला गीत मैं सुनाना चाहूंगी अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारे इस खंड का सबसे पहला गीत और क्या, बस आप हमारे साथ हैं तो और क्या चाहिए हमें। यस आपको अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में गाया गीत दोस्तों आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो वैसे भी दोस्तों आज का मौसम फिर से उतना अच्छा नहीं है, बारिश का मौसम है दोस्तों। आप मतलब जरूरत पड़ने पर ही बाहर जाइएगा, ठीक है? अगर आप घर में रह सकते हैं तो आप रहिए, ठीक है? काम के लिए तो जाना ही है, ऑफिस वगैरह वगैरह, है कि नहीं? यस, इसलिए आप अगर बाहर जाएंगे भी तो बस किसी काम के सिलसिले में हो या बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? यस, अब हम चलते हैं

0: गीत की तरफ, लेकिन अगला गीत सुनाने से पहले मैं आपके भेजे गए संदेश की तरफ चलना चाहूंगी। और संदेश आया है मेरे दोस्त विपिन की तरफ से।
1: क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया?
0: RJVL मैसेज का टाइप रही थे लुत्तुक मिन तिफावा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ऐसा
1: उसके पास टाइम
0: क्या?
1: नहीं था।
0: ऐसा है।
1: ये प्यार भी अजीब चीज़ है सुनो।
0: यस, लेकिन वो
1: जानता
0: ये
1: है कि
0: नहीं
1: मेरे दिल
0: जानते
1: पर
0: कि
1: तुम्हारी
0: प्यार
1: बाह
0: का
1: बिछी है।
0: पहला खत लिखने में वक्त तो लगता
1: मुझे
0: है,
1: तो
0: नए परिंदों को उड़ने
1: तुम्हारा
0: में
1: कम
0: तो
1: नहीं
0: वक्त
1: लगता।
0: तो लगता
1: मैं
0: है।
1: तुम्हारा कमी हूँ
0: कहाँ
1: मुझे किसी से प्यार
0: से कॉपी पेस्ट करके लिखा है बताइए। वाकई बहुत ही खूबसूरत संदेश भेजा आपने विपिन जी एंड डॉक्टर विपिन जी। ओ, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों मैं आपको बताना भूल गई थी कि कृषि दूसोंगे मो 12 बजे ना FBR कनपेज आ खान हम दोबारा लाइव शो पर हाजिर होंगे 12 बजे। ठीक है, आप सभी मेरे साथ जुड़ना। अगर आपके पास नेटवर्क होगा, सिग्नल होगा, ढेर सारे कमेंट्स भेजना। ठीक है, मैं आपके प्यार भरे कमेंट्स का इंतजार करूंगी। ठीक है, मत भूलना 11 12 बजे। ओ दर सोमा कन लाइव दोन का ओ इन सवाई आ मिलो तुलपी तुरिंग के सोम से वा चुआन कमेंट्स तम दे खा लाओ थोन उला चुआन लाइक्स ते खा मिलो पे चुर चुर उला। ठीक है, यस। और सांग पुई पा ITI हियान RJVL इन सवा इन सबई उले इलाप्ले या मो ये करोन लंखा नांगिन कलोंगाई थरें अनिया नेक्स्ट खा इतान करोन खांगे अरोन तिया कन्वन लोम छीन तक एम ओ। यस, तो चलिए हमारे बहुत ही करीबी खास दोस्त डॉक्टर विपिन जी का बहुत ही खूबसूरत मैसेज के कारण मैं आपको सुनाऊंगी बहुत ही खूबसूरत गीत। जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्त, उम्मीद है आप सभी को बहुत ही खूबसूरत गीत प्यार तो होना ही था। कुमार सानू के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे दोस्तों। यस, अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ। और दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गई थी कि हमारा समय ना 10:40 तक का है, ठीक है? यस, तो जैसे कि मैंने कहा था कि आप सभी अपने अपने ऑफिस वगैरह वगैरह दुकान कहीं पर भी हो, आप सभी पहुंच चुके होंगे और आप सभी अपने अपने काम कर रहे होंगे, स्टार्ट भी कर लिया होगा आपने। आप सभी अच्छे से करते रहिए, हम भी अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जाएंगे। और यहाँ पर संदेश आया है मेरे दोस्त जलजामा की तरफ से। आज भी वो इन ला माकन उ तुए मोते ते ही अमेल शियात एमो दी इन बेलचियांग मसलवा था लौलाक पुई तो लौ से कति ए इत वे एम नेक्स्ट सॉन्ग उची पे अन इन पनीतान ओ अशे था वांगा अलाक पुई चाक वांगा नी खा ओ जाम मेल छा आती आ चुवांग इन अलाक पुई नी खा ओ अशियात सा खाते कचुमो ओले। तो चलिए फिलहाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप सभी का दिन अच्छे से यूं ही बीता रहे। और चलिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, दिल क्या करे के गीत की तरफ चलते हैं। उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में गाया गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत। इस बारिश के मौसम में ये गीत मेरे साथ, हमारे साथ, आपका समय अच्छे से बीता रहे दोस्तों, हम यही चाहते हैं, ठीक है? और बस एक बात कहना चाहूँगी दोबारा कि आप ना कभी भी मतलब उदास मत होना, ठीक है? उदास मत होना कभी भी। मैं नहीं चाहती कि आप उदास उदास होकर अपना समय बिताए, ठीक है? आप भगवान पर भरोसा रखिएगा, ठीक है? जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, ठीक है? जो हो गया सो हो गया, ठीक है? तो आइए चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दिल क्या करे मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को दिल क्या करे गीत जरूर पसंद आए होंगे। यस, और हमारा समय भी चला जा रहा है, और यस, हम भी आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यूं ही समय को चलिए बर्बाद नहीं करते हैं। जल्दी से आपके भेजे गए संदेश की तरफ हम चलेंगे, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि दोस्तों आप सभी का समय दिन अच्छे से बीत रहा होगा, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपका समय अच्छे से बीते। ठीक है, एक बात कहूँ आप सभी से, सुनना चाहोगे? सुनिएगा, ठीक है? लेकिन ये बहुत ही, मतलब क्या बोलते हैं, उन उन दिल तोड़ने वालों के लिए है, ठीक है? अच्छे इंसान के लिए नहीं है, हाँ, ठीक है? बात ये है कि गलत लोग गलत करके भी शर्मिंदा नहीं होते, ऐसा है ना? आप भी मानते हैं इसको? गलत लोग गलत करके भी शर्मिंदा नहीं होते, सही लोग केवल इल्जाम से ही टूट जाते हैं, ऐसा मानते हो आप? मैं तो मानती हूँ, गलत लोग गलत करके भी शर्मिंदा नहीं होते, सही लोग केवल इल्जाम से ही टूट जाते हैं।

ये जिंदगी भी क्या चीज है ना दोस्तों, पता नहीं कब कहाँ कैसे सिचुएशन और कैसे कैसे लोगों से हमें मिला देते हैं और हमारे साथ क्या क्या हो जाता है, क्या क्या हो जाता है ना दोस्तों। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके साथ जो भी हो रहा है या हो गया है, हो चुका है, हो रहा है, उन सब पर आप उतना मत सोचिए। जो होगा ना अच्छे के लिए ही होगा, ठीक है। और चलिए फिलहाल vì công ty hiện ở trên một VL ý u khó xin trả ra ở bầu ẩn tỷ à ôi ổng lâu ấy xoay tù rì xe lâu lưu tục ổ đoàn xong bà nhìa gà lại đoàn khá mình nông bầu sân vậy xa em chân mà vả là hiện ở trên lạc lưu tục VL ôi ha các bạn phu lâu ấy mà sẽ các bạn lộm gà lâu lạc mô ก็เราง่ายขาเจเนีย next ค่ะง่ายละตู้เตะจงจงตานเลยเสียตัวกินอีตานก็หลานวงวงเอมาวาลเฮียนรอนเดียนี่กันวันล้มตะเกมโอมาวาลจานนางโปตวงเตวินอินหาเตข้าเราถกลาตรวจควาเตกันสวยตวงข้างควาเตอัจฉริยะเราปุยเสียตุนไลไปจูรัวสูดูเราปุยไม่เสียเลยมินเตอมเวเลเจ้าๆไม่เลี้ยงอะไรชุวังชวนจูเลวะขจวนปนที่เขาเลวชวกลุตุกเลวอุลาโอจูเฟนี่เลวชวนอินละมาคันเลวอมชามชามอุลาจันจันลามังเตอินอินเมสเซจมังเตอินกันเลวออยจาร์จาร์ดอนเซอร์นี่ทีเก้ต่อเจลีเอบ่ฮัตฮีสเปเชียลเซมาวาลาอ๋อลักมินตีมินตีตูตานลักแต่ให้กันจากเวสินโอ้กันลักเราเราปุ้ยไม่เสียตัวเฉลี่ยอิสบาริชเกมอสเมเมย์อาบก็ดูบาราสุนานาจะฮงกีบาริชเมตุมเนฮังกักร์อร์โรฮันปรีดเกอาวาสเมกายากีนดอสโตเมสุนานาจะฮงกีYes, बहुत ही खूबसूरत गीत, चलिए सुनते हैं इस बारिश के मौसम में दोस्तों। ये गीत सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। तो स्पेशली आप सभी दोस्तों के लिए और माँ वाले के लिए और मेरे दोस्त वे कुंगते ते जामते और मेरे दोस्त विपिन के लिए भी जो हमें ऑफिस में काम करते समय हमें सुन रहे हैं। Yes, आप भी अपने काम करने के साथ साथ मुझे सुन रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है दोस्तों। तो आइए आपके समय को और भी हसीन और बहुत ही अच्छा बनाते हैं इस गीत के साथ, मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को रोहन प्रीत और नेहा कक्कर की आवाज में गाया गीत बारिश में तुम आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यार भरा गीत तुझ में रब दिखता है, रूप कुमार राठौर क्या की आवाज में गाया गीत दोस्तों मैं सुनाना चाहूंगी। और दोस्तों, आपके संदेश की तरफ मैं चलना चाहूंगी। यहाँ पर एल बी रेंट ले ख्यान आर जे वी एल वो इन्नी मन नुआम ले इ प्ले ली सन ले मै नेक्स्ट खा इतान ओ इ लाइफ डोन बोका लौ थी रेंग अंग चे रंती ने इन बन फेल छेन लम तक एम ओ गन मेल दे हन छल ए जवा से चन अफुर ओम डोन सियामो कहुपुर एम पखत ओ कहुपुर ना छन पखत चमो nui hi ka du ve si a life a ron lan hi chuan nui vak vak kha a rem cha chin si lo lai tak khamo kan nui me de kha a che te box si a zu mang chuan kan pur te chia am lo ni mi fa te ang khan han mo han perfect fek mai ila cha mai turani a mai ro chu kan perfect lo na lai hi enge kan enge pathian min mangai na hi alang zual bo achiang zual ani chu shethi in shethia mem main jab bhi aap se kuch na kuch share karti hu na to na mera ye jo baat hai na matlab ulta chala jata hai aur dosto chaliye अगले गीत की तरफ चलते हैं। और दोस्तों, एक बात कहूं दोबारा आप सभी से कि जिंदगी हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती, ये बात आप समझते होंगे ना। जिंदगी हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, लेकिन जो हर सिचुएशन में खुद को संभाल लेता है ना, वही असली विनर होता है। ठीक है, असली विनर किसको कहते हैं? जो हर सिचुएशन में खुद को संभाल लेता है वो ही असली विनर होता है। ठीक है, तो इसलिए जिंदगी हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, इसलिए आपको स्ट्रांग बनना है। ठीक है, हर काम में, मतलब हर किसी चीज में, चाहे वो काम के सिलसिले में हो, या चाहे मोहब्बत के सिलसिले में हो, या चाहे दोस्ती के सिलसिले में हो, या किसी के सिलसिले में हो, दोस्तों आपको स्ट्रांग बनना है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों, मैं गीत की तरफ चलना चाहूंगी, गीत सुनाना चाहूंगी तुझ में रब दिखता है, मेरी तरफ से रूप कुमार राठौर जी की आवाज में गाया गीत आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, हमारा समय खत्म हो गया है, यस होने वाला है. हमारे पास केवल 3-4 मिनट हो गए हैं. और यहाँ पर जाते जाते दोस्तों, मैं आपके संदेश को पढ़ना चाहूंगी. जा मखियान अर्चे वी एल कुंग ते ओम हर के बिन लम मी खा नि जान रुआ सुर नुआया अकोम थंग अन कोम थंग लुई कोर चकाय छुआक मन तुमा छुआक चू कोरते लुई लियानिन कोरते लुई लियानिन अला अल थुत अंती अरुआंग अनजोंग मेक अनि चु ओय हबोने जाम ओ लो जोंग मुंगे से के बंती एम ल चानि के फल लो सिन चान पा एंगा मेसेज रोन लेंगा आर जी आ ngai lo duty ring ani moi lo duty chuan kho che nong chua po kho che nong chua po nuam takin aman le thei don ta ani hi aman cha chin tak em ma va la hian rjvl in sit su ai nang tu ka mel cha hi kala mu lo aman lo mom em tu na Ronchu le turcia himo arje ma mo hi ke ain mo ain sa le zwala mel cha khanya mo yes jilal za ma khan lo ho lo se teran ti vel ani o ma ba la hi ron ze tlat o this one anuam chau don turanga ila o to chaliye filhal mere pyare pyare dosto mere jane ka samay aa chuka hai aur main dil se aap sabhi ko shukriya ada karna chahungi ki aap sabhi is tarah hamara saath dete hain hansi mazak karte hain pyar bhare baatein karte hain dosto to aaiye zyada main aapse ab baatein nahi karungi aapko geet sunakar chali jaungi keval is khand ke liye aur main wapas aaungi apne live show par hamare fb ke page aur India Radio Aizol par dosto hindi ke khand pe dosto aap sabhi ka intezar rahega theek hai pray karna mere liye ki acche se show jaye aur signal acha bhi ho aap taki mujhe aap dekh sake sun sake theek hai to chaliye ye aakhri geet meri taraf se aap sabhi ke naam

हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हम दोबारा स्वागत करते हैं हिंदी के खंड पे। और आपके साथ फिर एक बार जुड़ी है आप सभी की दोस्त आरजे वेली। और जैसे कि आप सभी को पता है कि दोस्तों, आज हमारे FB के पेज ऑल इंडिया रेडियो पर लाइव शो चल रहा है दोस्तों। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप बेशक जुड़ सकते हैं। FB पर जाइए, ऑल इंडिया रेडियो पर आप हमें देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पेज का नाम है ऑल इंडिया रेडियो आइजोल। ठीक है, और आप सभी के प्यार भरे संदेशों का भी इंतजार रहेगा। और दोस्तों, FB के हमारे शो पर भी आपके कमेंट्स का इंतजार हम करेंगे। ठीक है, तो आइए, आप सभी का दिन अच्छे से बीत रहा होगा और आप सभी के इस दिन को, इस समय को और भी अच्छे से बनाते हैं दोस्तों। आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM जो 100.7 दोस्तों। और आपके साथ फिर एक बार हिंदी के खंड में जुड़ी है आप सभी की दोस्त आरजे वेली। और मैं उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों, आप सभी को मेरे साथ हिंदी के इस खंड का ये जो लाइव प्रोग्राम भी और लाइव शो भी और ये FM 100.7 का भी ये जो हिंदी का खंड है ना दोस्तों, आप सभी को जरूर पसंद आएगा। तो चलिए हम अपने इस खंड की शुरुआत करते हैं जल्दी से। और हमारा समय पूरे 12:40 तक होगा। ठीक है, तो चलिए इस खंड में मैं सबसे पहले आप सभी को सुनाना चाहूंगी अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गीत समझावा। बहुत ही खूबसूरत गीत है दोस्तों, आप इस गीत का जरूर आनंद लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं इस खंड का सबसे पहला गीत समझावा, मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को हमारे आज के हिंदी के तीसरे खंड का सबसे पहला गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। और तो चलिए, मैं चलना चाहूंगी आप सभी के प्यार भरे संदेश की तरफ। और संदेश मुझे मिला है मेरे दोस्त अजामा की तरफ से। अजामा ख्यान अजवियल गुड गुड नमस्ते गुड आफ्टरनून जाम ओ इरोन टाइप अंग अंग यान कलो सियार वेला मो फ्याम थोनी खा ओ छत किन इ लाइफ थे ना दु सकना कलान से ओ अरोन ती आ तिचवान ओले कलो मो तुके ओ जाम चवान मासे विन सु कनार ही जतला हे कनार जा कशितलांग वे दोन यांग चवान लाइफ एफ बी लाइफ एंड गाय बोक मेसेज टाइप गाय बोक अंगसी दुन खमो चौन हितेंद्र दास जी की तरफ से संदेश आया है। हितेंद्र दास जी लिखते हैं कि गुतनून आरजे जी बिजी था और अंतिया कोई बात नहीं हितेंद्र दास जी, लेकिन आपने अपने कीमती वक्त निकाल के मुझे संदेश भेजा, इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी। और क्या आपको पता है कि हम एफबी के हमारे पेज में लाइव शो हमने स्टार्ट कर लिया है। अगर आपके पास टाइम होगा तो जरूर आइएगा, कमेंट्स भेजना मत भूलना, ठीक है। यस लदिन पुय फल कौन हियान आर जे प्रेले तुर्खा नंग मातान ले लौंगाई थवे जोंग जोंग तान ले आर जे जोंग जोंग तान ले कछियान ते बेंग शंग शंग मी ते आर सी आतलुआ मुआन जा वा वाल पुया आ चिन चिन आ लोम ते पुया ते तान अरोन ती आ फेल छिन है मे लदिन पुय फल कौन ही ओ फकोम है मे चौन चौन गस बोय पोन गई जुआ नमस्ते नेक्स्ट इतान अरोन ती बोका ओले जोनगस बॉय पो कलोम लु तुके ओ चुआन एल बी रेन थे ह्यान कथलाक ने थपरोन थोन आ कलोमे आर जे वी एल मु इन वाम चोनु हुन मन नुआम ले इलाम मशुआई अनल नेक्स्ट खा इतान रोन ती बोका चुआन एल बी रेन थे अनिलो बी एल चोंग थू ह्यान इंटिंग रोन ती kalau en ve zwai chen ya teron dia e kai aban lom om em ve o a to plen min lo man pui ro o min lo tel pui don ya o chan comments kha lo lo thon nge nge ro o bl chan ma wala aron langa message kan sia le lo kang ma wala likhte hain ki rjbl cha changai nat om i segment hitu hey pui ke po in ka mai thailo ni hi nang hitu listeners choice ni lawin people people choice ini hi ma wala haron tia ma wala mi fak oh mi fak moi thai khop mai ka phu lo in oh ma se kalom kalom tak zet

multiple choice nga eh. Kamu alu kati. Ole kha kati. Kamu kan nui na sa thay siya. Life hi chu ka zwa mak lo ni mo. Nui hi kan du bok siya. Ole, bahut bahut shukriya mere pyare pyare dosto. Aap sabhi ke pyar bhare. यस संदेश के लिए इस तरह जब आपसे हम बातें करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है. यस और इस तरह आप सभी का हमें इंतजार भी रहता है. अगर आप हमारा साथ नहीं देते तो हमें अच्छा नहीं लगता है दोस्तों. ठीक है, तो इसलिए आपके पास जब भी मौका मिलेगा हमें संदेश भेजने के लिए, हमसे बातें करने के लिए, तो ज़रूर आप संदेश भेजिए, हमसे बातें करिए. ठीक है, हम आपका इंतज़ार FM 100.7 पर हमेशा करते हैं और करते रहेंगे. ठीक है, तो आइए चलिए सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत. इस खंड का अगला गीत हंसाते हो रुलाते हो मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

दोस्त, उम्मीद है आप सभी को हंसाते हो, रुलाते हो। अलका याग्निक और अभिजीत के आवाज में गाए गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। हंसाते हो, रुलाते हो, हमेशा तुम सताते हो। यस, ये गीत मुझे बहुत पसंद है और आपको भी ये गीत सुनकर जरूर दोबारा पसंद आया होगा। और दोस्तों, यस, मैं चाहती हूँ कि इस तरह आप सभी का रिलेशनशिप प्यार का हो या दोस्ती का हो, हमेशा बरकरार रहे। दोस्तों, जैसे कि कभी कभी किसी बात के लिए आपके बीच कुछ झगड़ा मतलब झगड़ा ये सब कुछ होता भी है, तो आप उसे सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने रिश्तों को तोड़ दें, ठीक है? आप अपने रिश्तों को यूं ही तोड़िए मत, संभालिए, ठीक है? तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को गीत पसंद आया होगा। अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी। यस, लदिन पुया ने ट्रेन मैसेज कंदोंग लिया, लेकिन मैं इनका संदेश इस अगले गीत के सुनाने के बाद पढ़ना चाहूंगी, ठीक है? लदिन पुया, थोड़ा इंतजार कीजिएगा, मिलूंगा आप लोग रो। तो आइए ये सुनते हैं, छाया है जो दिल पे क्या नशा, मेरी तरफ से कविता कृष्णमूर्ति और शान की आवाज में गाएगी मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को छाया है जो दिल पे क्या नशा, शान और कविता कृष्णमूर्ति के आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे दोस्तों। यस, और दोस्तों अगर आप सभी ने जो भी मुझे सुन रहे हैं, अभी तक आपने हमारे लाइव शो को ज्वाइन नहीं किया है, आप ज्वाइन कीजिए प्लीज। आपकी आरजे वीएली लाइव शो पर है दोस्तों। आप मुझे देख, अगर आपको मुझे देखना है तो आप मुझे देख सकते हैं, हम मुझसे बातें कर सकते हैं, ठीक है। यस, तो चलिए, आप सभी का समय अच्छे से गुजर रहा होगा, अच्छे से बीत रहा होगा, और मैं चाहती हूँ कि इस बारिश के मौसम में, बहुत ही खराब मौसम में, आप ज़्यादा बाहर मत जाइएगा, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। यस, तो चलिए अगला गीत सुनाना चाहूँगी, इस दिल में क्या है, लता मंगेशकर और सोनू निगम के, उदित नारायण और लता मंगेशकर जी की आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से, इस खंड का अगला गीत आप सभी के नाम।

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को इस दिल में क्या है बहुत ही खूबसूरत गीत, यस, उदित नारायण और लता मंगेशकर जी के आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। और दोस्तों, यहाँ पर यस संदेश आया है बीएल चोंगथू की तरफ से। बीएल चोंगथू ह्यान Arjevil nuam deu kha lo life ro ka buai deu wa ka man huna ka lo zom le ang che moi deu deu kha lo play zero ro i play le tur zong zong kha ngai tha tu zong zong tan le FB life a lo en tu zong zong tan ka lo la ne aron ti ya ole i fel chin le mai LB tuang de win o nuam de win i ti tu kha i lo di don nya o chi chuan FB lama khan lal lal eng ruali ma engi khan thil ka rishta ron yes yes FB ke live show par hamare ek pyare shrota ne hame yes sandesh bhej kar ek geet farmaish ki hai, wo hai dil ka rishta, wo hum is agle यस इस आपके संदेशों को पढ़ने के बाद हम जरूर सुनेंगे। चुआन जाम्पू यासिन सोंगियान चोरी चोरी चुपके चुपके का खा कर रोन थे मी सर रोन तिबोका ए रोन थंग से रू ओ यस आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपके पास ऐसा फरमाइश गीत होगा तो आप भी फरमाइश मतलब कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे प्लेलिस्ट में होना चाहिए। अगर हमारे प्लेलिस्ट में नहीं होगा तो हम आपको नहीं सुना पाएंगे, ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमसे नाराज नहीं होंगे, है कि नहीं? और चौहान सारा साइलाओ एल जे साइलाओ ह्यान तान पा इन का मोटोर मा आ का एन रिंग से मु इवन नुआम एम ललवान दे रोन थी आ तक तक मो चौहान दे मिन लो खल रो मोटोर खा मिन एन मिन एन मिन एन min en ngai bok if ma lam en ngai bok si kha chan o e lo che swal pal la wang e lo phim khur le ro yes ma engi rin engi kandia urin engi pon min lo thir me ka hello rjvl play moi ve mel cha phet phet bok si aron ti a kalom lut ke o kalom lut lut tu ke o eng chuan ni thleng tlua ngem ro te kha sur na se si a in te kha tlua ta ka i thlen kha ka be se o chuan ve na te hun no am de lo mang don ya tike or kum te a pa chuaw hian arje mu in nuam lut tuk che lo bok si ron ti a so i tur in che lo oh in fak der na an ka kha o กับผู้เรากลอมลูกตุเกอออินสบายจงอาคารจวนจอนเตียทีซีจอนทีซีอาฮันไงจวนอาร์จิตสิงห์ลาเคเรียตเอโมบาเทเยกับฮีนาไงท่าอีลากับปีกับปีเตอร์

Etan, ipitar te chu han soi phot la chuan kan ngai tha ang ole filha dosto chalte he lal eng ruali ma engi ki taraf se jo farmaish ki the dosto dil ka rishta meri taraf se aap sabhi ke liye main sunana chahungi aur yes और लल एंग्रो वाली तान लिया लियाओ ये जो अगला गीत है मैं पेश करना चाहूंगी तो चलिए सुनते हैं दिल का रिश्ता मेरी तरफ से आप सभी के नाम

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को दिल का रिश्ता, यस, आपके फरमाइश गीत हमारे एफबी के शो पर हमारे एक प्यारे दर्शक की तरफ से जो फरमाइश गीत दिल का रिश्ता आप सभी को जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। और हमारा समय खत्म होने वाला है, या यस हो चुका है, और हम कहीं नहीं जाएंगे, हम वापस आएंगे अपने हिंदी के खंड को लेकर, आज के हमारे आखिरी खंड को लेकर 1:50 पर दोस्तों। दार खतले मिनट सोमलिया ओ गनरोन कीरले दोना की इनमु अंख्यान इनमु थे अंख्यान 100.7 FM जो ओ 100.7 MHz आख्यान ओ मिलोंगाई थे दोना तिचुआन हेमी लाइफ वो इन ओ तुन बाकी चू लाइफ इन मिनमु थे दोन लाओ आ मो एवरी फ्राइडे, एवरी फ्राइडे 12 12 to 12:40 ठेंग ही कन लाइव थ्री ना एवरी फ्राइडे ओ हिंदी बी का ज्ञान। तो आप सभी के, यस, आप सभी को मैं दिल से शुक्रिया अदा कहती हूँ आप सभी के प्यार भरे संदेश के लिए दोस्तों। और मैं आप सभी से विदा लूंगी बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, यस, अपना बना ले अरिजीत सिंह के आवाज में गाया गीत। तो दोस्तों, मिलते हैं दोबारा हमारे आज के आखिरी खंड पर, और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM और 100.7, और आपके साथ हिंदी के खंड पे जुड़ी है आप सभी के दोस्त आरजे वीएली। और मिलते हैं 1:50 पर दोस्तों, मैं आप सभी का इंतजार करूंगी, ठीक है, आरजे वीएली के साथ हंसी मजाक प्यार भरे हम प्यार भरी बातें करने के लिए दोस्तों, मैं आप सभी का इंतजार करूंगी, ठीक है। तो चलिए अपना बना ले से मैं आप सभी से विदा लूंगी, तब तक लिए दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए, ठीक है। तो ये गीत, आखिरी गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

हेलो नमस्ते दोस्तों, आरजे वेली की तरफ से गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को। आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम जोई 100.7। दोस्तों यस, आप सभी का हम दोबारा स्वागत करते हैं आज के हमारे हिंदी के आखिरी खंड पर। दोस्तों इसके बाद मैं आप सभी को आप सभी से अलविदा कहूंगी दोस्तों। और मैं कह नहीं पाऊंगी, मतलब मैं कह नहीं सकती कि हम कब फिर से मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन जब तक हम नहीं मिलेंगे, आप सभी को अपना ख्याल रखना है, हमेशा खुश रहना है, अपना काम अच्छे अच्छे से करना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम अपने इस खंड की शुरुआत करते हैं, और आप सभी के प्यार भरे संदेशों का भी इंतजार रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इस खंड में मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी। दिल मेरा तोड़ दिया, अलका याग्निक जी की आवाज में गाया गीत मैं सुनाना चाहूंगी। वैसे भी हम इस वीक को पूरे मतलब प्यार भरे गीतों को सुनकर आ, आ, आ, सुनते आए हैं, और आज ये इस खंड में मैं आप सभी को दिल टूटने वाला गीत सुनाना चाहूंगी दोस्तों। और जितने भी मुझे सुन रहे हैं ब्रोकन हार्ट, उन सभी प्यारे दोस्तों के लिए ये गीत मैं पेश करना चाहूंगी दोस्तों। तो आइए

जी हाँ दोस्तों, बुरा मत मानिए, अगर आपको कोई छोड़ के, आपके दिल को तोड़ के चला गया ना, कोई बात नहीं आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है? यस, बुरा मानना भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने आप सभी से कहा है कि अगर कोई तुम्हारे बिना खुश है ना, तो उसे खुश ही रहने दो, उसके बीच मतलब उसके पीछे, यस, उसके पीछे भागकर अपना मतलब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खराब मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा है ना दोस्तों, वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? जो तुम्हारा है ना, वो खुद ब खुद चल के तुम्हारे पास आएगा, ठीक है? जो चला गया है ना, उसको जाने दीजिए, ठीक है? यस। और कभी भी अपने दिल को मत दुखाइए किसी इंसान के लिए, जिससे मतलब जो इंसान आपसे बिल्कुल प्यार ही नहीं करते, उस इंसान के लिए आपको भला क्यों सोचना, है कि नहीं? अपने आप को खुद बर्बाद करना सोच सोच के, यूं ही उनके यादों में वक्त बिताना जरूरी नहीं है दोस्तों, ठीक है? तो आइए अगले गीत की तरफ चलते हैं। और अगला गीत मैं सुनाने से पहले, मेरे सुनाने से पहले दोस्तों, यहाँ पर मेरे दोस्तों की तरफ से संदेश आया है। एल जसाइलो हियन, हेलो हेलो रोंतिया कमे।

La Ronton, oh, capic charzong zong nen. Alom, ome, ole. जान मेरे दोस्त विपिन की तरफ से भी संदेश आया है. उन्होंने लिखा है आरजेवीएल ला थनथे ये मरोंतिया थनथे छियांगे चुआन अथनथे चुआन फिर भी तुमको चाहूंगा. यस आशिकी टू अमी खा का दुआ ngai tha tu tur a ka du chu an ngai tha ve mayang a je ma ho i ka long du in a long nui le char charai ti hian mi lo nui char char ze la mo nuam hi ti thai khop maya ani nakin loka kan officer tur ani boka mo to chaliye फिर भी तुमको चाहूंगा हमारे दोस्त यस हमारे डॉक्टर ऑफिसर विपिन सर की तरफ से फरमाइश गीत आई है फिर भी तुमको चाहूंगा यस आशिकी टू से फिर भी तुमको चाहूंगा ये आशिकी टू फिल्म से ये तो आशिकी फिल्म टू से नहीं है ये हाफ गर्लफ्रेंड से है मेरे दोस्त इसे स्वालन यांग यस हाफ गर्लफ्रेंड से फिर भी तुमको चाहूंगा मेरे दोस्त विपिन ने फरमाइश की है तो आइए मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी को. और दूसरा संदेश आया है मेरे दोस्त जामा की तरफ से जामा ही आरजेवीएल गुड आफ्टरनून रोंतिया ओले जाम नंग पोले ओ चुआन वो इन कमू द ऑफेक्ट इलाइफ का ngak lel te reng nen इलाइफ ला इन कन बॉस इन हुन दंगा मिन तीर थुत अनि छु हन याल चीला वनिसु तो तकिन हो अंग छि ओ नेक्स्ट सॉन्ग कन पनि तान चोरन दिया पोइलो रे रेंग जाम थिल टू लाइ लो बुआया इना खा अपोइ मो बेर जो कलो मारो छु लाइफ खमी खा लाइफ खा ओ अनुआ पोले एन लेट लेवे थेया चोन e comments te po awa thon thei thawa chon awa like awa like thei thaw boka tro ki nai man thuna lo en chok bek ro ole bahut bahut shukriya jam aapke sandesh ke liye to chaliye hamare vipin sir ki taraf se jo farmaish geet hai yes main phir bhi tumko chahunga arjit singh ki awaaz mein gaya geet meri taraf se aap sabhi ke liye aur specially hamare dost vipin ke liye

वेल दोस्त, उम्मीद है आप सभी को हमारे दोस्त मेरे दोस्त विपिन की तरफ से जो फरमाइश गीत थे फिर भी तुमको चाहूंगा अरिजीत सिंह और शशा की आवाज़ में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, आप सभी से अलविदा कहने का समय आ चुका है। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमारे पास केवल 2 मिनट बचे हैं, तो इसलिए मैं जल्दी से चलना चाहूंगी आपके भेजे गए संदेश की तरफ। Listeners, they star in Ika. Oh, and oh, hello, Mom Chin. No, I'm here. Next, Kangachan Pa special. RJTM Stanley Itan Rontiani Maval Hian Kalom Chin Le Maval. Oh, Minty Lim Ngoi Ngoi Tsuan Zela Rentla Hian RJ Pele Turka Tunaka Passenger De Tuangi. Te huni moyale lomate longai thakatan kalau thlang ve o ole chuan twang dewin in kazel donia o in tumram te lo thleng ula tro khuate se si a phim khur dewin motoi local donia tro chuan alas nan lb ren thlai hian rvl chu hun man nuam le la thlan thei lo chuan mosam pyar ka rang badalta tikha orontia rj ma moitan le zo fm zo oinga thatu zong zong tan orontia ole kan ngai thaman to lawang zon chung a redon si amo lb min che thiam la nakina an next ta kan ngai thadon nya oi ron thlang tlai box si a यस तो चलिए फिलहाल आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा अपना ख्याल रखना दोस्तों, ठीक है। यस, हमने कहा था कि कभी भी उदास मत होना, ठीक है। जिंदगी हमारे साथ अच्छा ही करेगी, ठीक है, अगर हम सच्चे रास्ते पर चलेंगे तो, ठीक है। यस, तो चलिए, प्यार हो जब प्यार हो बेशुमार हो से मैं आप सभी से विदा लूंगी। तब तक दोस्तों, आरजे वीली की तरफ से बाय बाय, टेक केयर, बे कू। जब तक हम नहीं मिलेंगे, आपको भी अपना ख्याल रखना है, ठीक है। और मेरा साथ देने के लिए और एफबी के हमारे लाइव शो पर भी मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी प्यारे दोस्तों को। तो आइए, ये आखिरी गीत इस खंड का मेरी तरफ से आप सभी के लिए, और फिर एक बार आरजे वीली की तरफ से बाय बाय, टेक केयर, बे कू।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेता के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में

0: संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने यूजर नेम फीचर को लागू करने के संबंध में सरकार को अपना जवाब सौंप दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मेटा के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जवाब कल रात प्राप्त हुआ था और वर्तमान में इसकी जांच की जा रही है। इस महीने की पहली तारीख को सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर को लागू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी कर मामले पर परामर्श पूरा होने तक इसे लागू न करने को कहा था। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर कल और रविवार को 2 दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के 2वें क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा, वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi arrived in Auckland today on the final leg of his three-nation tour, where he received a warm ceremonial welcome from New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The two leaders shared a warm embrace as Prime Minister Luxon personally received Mr. Modi on the red carpet at Auckland Airport. Prime Minister Modi was accorded a ceremonial reception on the tarmac with representatives of the Indian and New Zealand armed forces in attendance. Earlier, Prime Minister Modi officially concluded a historic high-stakes state visit to Australia, leaving behind a future-proof blueprint for the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. From high-powered boardrooms to iconic landmarks, this intense itinerary systematically advanced diplomatic, economic, and security ties between the two democratic giants. The economic momentum ignited early with the India-Australia CEOs Forum, where business leaders celebrated a 55% surge in two-way trade driven by the 2022 ECTA agreement. To unlock further potential, Prime Minister Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese fast-tracked negotiations for the Comprehensive Economic Cooperation Agreement. The central government has amended drugs rules 1945 to strengthen regulation of high alcohol-containing drug formulations. The Ministry of Health and Family Welfare has removed the existing exemption from licensing requirements for formulations containing ethyl alcohol. According to the notification issued by the Ministry of Health and Family Welfare, all formulations containing more than 12% volume per volume ethyl alcohol in quantities exceeding 30 milliliter will no longer be covered under the exemption provided to them under Schedule K. Such products will be required to obtain the requisite licenses under the Drugs and Cosmetics Act 1940. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has said the government is planning to introduce E85 fuel, which would be about

नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं एफएम ज़ोए 100.7। आरजे एंजेला आप सभी से दोबारा एक और बार फिर जुड़ चुकी है और आज की शाम के लिए हिंदी का पहला सेगमेंट शुरू हो चुका है। और इस सेगमेंट में हम अलग अलग फिल्मों के गाने सुनने वाले हैं और इन गानों के नाम मैं अभी नहीं बोलूंगी। सबसे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि आपका दिन कैसा गया, क्योंकि आजकल हम सभी जानते हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे में गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि आप लोग घर में रहिएगा, अगर बाहर निकलोगे तो आप अपने साथ छतरी या फिर रेनकोट ले जाना मत भूलिएगा। इसी के साथ हम हमारा इस सेगमेंट का पहला गाना सुनेंगे। गाने का बोल है भूरे भूरे बादल। अरे वाह, ये तो इस मौसम के साथ बहुत मेल खाता है और ये लिया गया है लव यू मिस्टर कलाकार मूवी से।

दोस्तों, ये गाना था भूरे भूरे बादल, जिसे लिया गया है लव यू मिस्टर कलाकार मूवी से, और ये मूवी आया है 2011 में, और इसके नायक है और कोई नहीं बल्कि जो बहुत ही फेमस एक्टर रह चुके हैं, जितेंद्र जी के, उनके बेटे थे। ऑलराइट दोस्तों, हमारा अगला गाना होगा इसी मूवी से लिया गया, लव यू मिस्टर कलाकार, और ये इस मूवी का टाइटल ट्रैक है। तो दोस्तों, ये गाना सुनते सुनते आप सभी हमें संदेश भेजिए, हम आपके संदेशों को पढ़ने के लिए बेताब है। सबसे पहले हितेंद्र जास जी ने ही असम से मैसेज भेजा है, उन्होंने नमस्ते कहा है, सिर्फ उनका ही मैसेज आया है। मैं सभी श्रोताओं से निवेदन करती हूँ कि आप सभी अपना संदेश भेजते रहिए। हमारा अगला गाना होगा लव यू मिस्टर कलाकार।

लव यू मिस्टर कलाकार। कलाकार मतलब आर्टिस्ट। और इस मूवी के नायक है तुषार कपूर और नायिका है अमृता राव। दोस्तों हमारा अगला गाना होगा जाता है तुझ तक, और ये गाना है लिया गया है मर्डर 3 मूवी से, और इसे गाने वाले हैं प्रीतम।

तेरी झुकी नजर, प्रीतम की आवाज में इसे लिया गया है मदर थ्री मूवी से। दोस्तों हमारा अगला गाना होगा हम जी लेंगे, और इसे फिर से गाने वाले हैं प्रीतम जी, और इस गाने को दोबारा लिया गया है मदर थ्री मूवी से।

दोस्तों, ये गाना था हम जी लेंगे प्रीतम की आवाज में, जिसे लिया गया है मदर थ्री मूवी से। हमारा अगला गाना होगा तीन पट्टी मूवी से इंतजार। और इस गाने के माध्यम से आप सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आप सभी के संदेशों का इंतजार था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हितेंद्र दास जी का ही मैसेज आया है। कोई नहीं, शायद लोग खाना खाते बिजी है इसीलिए। मेरे बात आएंगे आरजे सुजैन और उनके साथ आप बहुत ही अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर अंग्रेजी के गाने सुनेंगे। इसी के साथ, इस गाने के साथ आप सभी से मैं अलविदा लेना चाहूंगी। आप सभी सुन रहे हैं एफएम जो 100.7 में, हूँ आरजे एंजिला। हमारा अगला और आखिरी इस सेगमेंट के लिए गाना होगा तीन पट्टी का इंतजार।

नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं FM जो 100.7 RJ इंजिला वापस आ चुकी है आप सभी को बहुत सुंदर सुंदर गाना सुनाने के लिए। इस सेगमेंट में हम हर दिल जो प्यार करेगा कोई मेरे दिल में है इन फिल्मों के गाने सुनेंगे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले अनु मलिक और सोनू निगम की आवाज में, ऐसा पहली बार हुआ है।

दोस्तों, ये गाना था शरारती, जिसे लिया गया है कोई मेरे दिल से, कोई मेरे दिल में है, और इसे गाने वाले हैं उदित नारायण और पमेला जैन। हमारा अगला गाना होगा इसी मूवी से, मुझसे दोस्ती करोगे।

दोस्तों, ये गाना था मुझसे दोस्ती करोगे, और इसे लिया गया है कोई मेरे दिल से, कोई मेरे दिल में है। और इसी मूवी से हमारा अगला गाना होगा कोई तो तेरे चांद से, और ये हमारे इस सेगमेंट का हमारा आखिरी गाना होगा। आप सभी सुन रहे हैं FM जो 100.7। मैं हूँ RJ एंजिला। मेरे बार आने वाले हैं इंग्लिश के RJ, RJ जोवी, और आप सभी को सुनाएंगे इंग्लिश की बहुत बहुत ही सुंदर गाने। तो आइए दोस्तों, हम आप सुनते हैं कोई तेरे चांद से।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं FM जो 100.7 RJ एंजिला। आप सभी से दोबारा एक और बार फिर से जुड़ चुकी हैं और ये सेगमेंट RJ's चॉइस रहेगा। हालांकि मेरे कुछ चॉइसेस मेरे प्लेलिस्ट में बनी हुई है, लेकिन यदि आपको कोई गाना सुनना है और वो हमारे प्लेलिस्ट में है तो हम पूरी कोशिश करेंगे आप सभी को सुनाने के लिए। सबसे पहले हम सुनेंगे दुआ और इसे गाया है अरिजीत सिंह ने।

दोस्तों, ये गाना था गहरा हुआ, और ये गाना लिया गया है बहुत बहुत ही फेमस मूवी से धुरंधर। और इसे गाने वाले हैं और कोई नहीं, हमारे बहुत ही चहेते अरिजीत सिंह। बहुत ही संदेश आया है उनमें से, हम पढ़ेंगे किनका संदेश। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ हितेंद्र दास जी का, जिन्होंने गाने की फरमाइश की है। और गाने की फरमाइश है कि इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, और उनकी फरमाइश को हम पूरा करेंगे, जो कि हमारा अगला गाना होगा। लल दिन पुया फल कौन मैसेज करते हैं, आरजे इप्ले ले तुरखा नंगमा तान ले लोंगाई थवे जोंग जोंग तान ले आरजे जोंग जोंग तान कछियानते वेंग शंग शंग मीते पापा रिपु कुंग तेया मिंग मोई तेया वाल दुई कोल मीते तान अरुण तिया। दोस्तों, हम सुनते हैं हितेंद्र दास जो द्वारा फरमाइश की गई गाना इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, जिसे चमत्कार मूवी से लिया गया है।

दोस्तों, ये गाना था अरिजीत सिंह और प्रीतम की आवाज़ में तुझको, और ये गाना लिया गया है कुकटेल मूवी से। हमारा अगला गाना होगा धड़क मूवी से, और ये मूवी भी बहुत ही फेमस रह चुकी है और गाना भी बहुत ही फेमस है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को ये गाना पसंद आया होगा। तो आइए दोस्तों, हम सुनते हैं धड़क मूवी का धड़क टाइटल ट्रैक सॉन्ग।

दोस्तों, ये गाना था धड़क, और ये धड़क मूवी से लिया गया है। हमारा अगला गाना होगा फाल्गुनी पाठक की आवाज में सावन में, क्योंकि दोस्तों ये मौसम है सावन का, तो आप सभी को सावन से जुड़ी गाना सुनाए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाली। कुछ भी हो दोस्तों, ये गाना इस सेगमेंट का हमारा आखिरी गाना होगा। मैं हूँ आरजी इंजिला आप सभी की, और आप सब सुन रहे हैं एफएम जो 100.7। हम बहुत जल्द मिलेंगे। कुछ भी हो, भले ही ये सेगमेंट इस रात का हिंदी का आखिरी सेगमेंट क्यों ना हो, लेकिन मेरे बात आने वाली है मिजो और हिंदी, माफ करिएगा, इंग्लिश के आरजे। आप हमारे साथ 10:30 बजे तक बने रहेगा, कहीं मत जाइएगा। तो दोस्तों, सुनते हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में सावन में।